0: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग्घ आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लघ टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएल ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि।
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाइफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली।
3: सूचना सूचना सूचना
4: कंसल्टेंट इंडोक्राइनोलॉजिस्ट एमबीबीएस एमडी इंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म डाक्टर कृष्ण ऐरी ईशान मेडिकल हल टीकापुर में यही साउन 23 गते चौथो शनिवार का दिन बिरामी चेक जांच गर्न आउँदै हुनुहुन्छ।
3: निम्न समस्याहरू
4: सुगर रोग
3: गर्भकालीन मधुमेह
4: महिला को शरीर में अनावश्यक रौ बढ़ने
3: सुगर रोग का कारण हुने समस्या जस्तै खुट्टा झमझमाउने पोल्ने दिन तथा रात में पटक पटक पिसाब लाग्ने मुख सुक्ने तिर्खा लाग्ने
4: थायराइड कम जस्तै थकान लाग्ने तौल बढ़ने छाला सुक्खा हुने कपाल झर्ने अनुहार फुल्ने चिसो बढी लाग्ने
3: थायराइड बढी जस्तै तौल घट्ने धड्कन बढ्ने पसिना धेरै आउने निन्द्रा नलाग्ने हात कामने चिचिडापन आँखा फुलेर बाहिर आउने
4: कम उमेरमा पनि प्रेसर मोटोपन कोलेस्ट्रोल बढ्ने
3: उमेर अनुसार शरीरको उचाइ नबढ्ने वा धेरै अग्लो हुने महिनावारीमा गडबडी र यौन इच्छामा कमी हुने के तपाईँले निम्न मध्येका कुनै समस्या त छैन छ भने ईशान मेडिकल हलमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98-58-42-31-31 र 98-60-11-14-00 डाक्टर आउने समय प्रत्येक महिनाको चौथो शनिवार बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म सम्पर्क स्थान ईशान मेडिकल हल टीकापुर 1 कैलाली। याद गर्नुहोस् जाँच गर्नुपर्ने बिरामी खाली पेटमा आउनु पर्नेछ।
5: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज। सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: कबू कापी रहीठ कबू पेन्सिल रहीठ कबू झोले फटाका आजीठ काकना हो काकना हो बाबा फिर उस टपाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल हे रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला जस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुही
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उपकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हमारो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से सेती राजमार्ग के दुर्गौली कंचनपुर सड़क खंड में यात्रु उकरण आवत जात में कठिन दुर्घटना समेत बढ़ना के साथ ही बाल बालिका उकरण विद्यालय जैन में समस्या। टीकापुर शिक्षा शाखा से शिक्षक डायरी वितरण करल पाछे विद्यालय में शिक्षक डायरी के उपयोगिता और प्रभावकारिता बढ़ती डायरी से शिक्षक उकरण विप्टेल। स्थानीय संरक्षण कर्मी डल्फिन संरक्षण में सक्रिय ई वर्षा 17-18 डल्फिन देख पर्ने संरक्षण कर्मी भोजराज डुंगाना के कहाई। रगत के माग बढ़ल पाछे टीकापुर रेडक्रस में रगत के अभाव। पूरा खबर निर्वाचन सेती राजमार्ग के दक्षिण खण्ड दुर्गौली कंचनपुर सड़क खण्ड में यात्री उकरण आवत जावत करना कठिनाई हुई थी बा। निर्माण कंपनी से सड़क के दाहिन बाव बजार किनार उठाइल सड़क में समेत माटी पटानी करलक छोड़ दल पाछे बरसात के समय में पानी से माटी धासगिलक नेंगना में समस्या हुई रहल बटोले बाट बस्ती के बीच में रलक करीब 1 किलोमीटर सड़क पूरे बिगड़ल बा। ईजानकी गांवपालिका वार्ड में 2-4 सके जोशीपुर गांवपालिका के 5 के मनैन के नेंगना और टीकापुर रैना मुख्य सड़क बनल बा। सड़क हिलम्बे हुई पाछे मनैन सड़क के किनार किनार नेंगे परलो वहां रपट के समेत गिरती रलक। कंचनपुर के परशुराम महतो के कहाबा दगरामा नेंगेबेर समेत समस्या हुईलो अपना कैसो गिरसेकल समेत जानकारी करेले बाटे। माटी पटानी हुईलक समय में रिक्शा चढ़ के विद्यालय जैना बाल बालिका हुकरा रिक्शा चलना फे नहीं सकलक पाछे सांझ बिहान साइकिल में लेह परलो। पानी परलक बेला में समेत बोक के लैजाई पर्ना करल। कंचनपुर के आसमानी चौधरी के कहाबा और स्थानीय कमला विष्ट से फिर सड़क में के कारण से कतरा मनैता समेत कमा के खैना डगरे नहीं बंद हो सकल। छोट छोट लड़का परका विद्यालय जैना में फिर कठिनाई फिटी रहा बताए गल बा। और स्थानीय पार्वती कठरिया फिर निर्माण कंपनी से सड़क किनार में कुराइल माटी और ग्रावेल सकेल समेत डार दिले से फिर मोटरसाइकिल में आवट जावट करना और पहले यात्री उकरण नेंगना में सहज होना बताए गल बा। 31 करोड़ रूपया के लागत में 23 महीना भीतर समेत सड़क बनाई पर्ना ठेक्का सत्यवती कंस्ट्रक्शन के से समझौता अवधि में 2083 वैशाख ओराइल में समेत सेती राजमार्ग के दक्षिण खंड के सूचना अधिकारी इंजीनियर केशव दत्ता मिश्रा जानकारी दिले बाटे। टीकापुर नगरपालिकामा शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखा से सामुदायिक विद्यालय में शिक्षक उकरण शिक्षण क्रियाकलाप में सहज हुए कहना उद्देश्य के साथ शिक्षक डायरी वितरण करल पश्चात पाठ योजना सहित के कार्य योजना बनैना करलाको शिक्षक उकरण विद्यालय शिक्षा में समेत डायरी के उपयोगिता और प्रभावकारिता बढ़ती गये। शिक्षक उकरा महसूस करते बात विद्यालय में पहल घंटी लागल संगे हाथ में शिक्षक डायरी बोक के शिक्षक उकरा कक्षा में कोठा में प्रवेश करते बाट कैयों शिक्षक उकरा हाफ छुट्टी के बेला फे समेत मोबाइल चला के बैठना करते मनो पाछक समय में शिक्षक डायरी वितरण पश्चात शिक्षक उकरण योजना बनैना हो शिक्षक डायरी में टिपोट करती बैठना समेत करल। हिमालय मावी खिया के शिक्षक बुद्धिराम चौधरी के कहाबा वहां के अनुसार शिक्षक डायरी के प्रभावकारिता मजा रलक हो यकरसे शिक्षक उकरण आपन पेशा प्रति आभिन ढेर जिम्मेवारी बना के शिक्षण है गुणस्तर बनीना सहयोगी पुग्ना बटोले बाटे। पाछक समय में शिक्षक हुकरा अपना हुकरण शिक्षण करना विषय वस्तु के पूर्व तैयारी करना हो शिक्षण के क्रम में अपना हुकरण लागल बाट समेत टिपोट करके शिक्षक डायरी के प्रयोग समेत करती रलक। कर्णाली मावी शक्ति के प्रधानाध्यापक खुमानंद ओली बटोले बाटे शिक्षक डायरी से शिक्षक हुकरण अध्यावधिक करती रलक हो पुस्तक हुकरण संगे संगे पुस्तक से संबंध अभिन्न प्रभात बनैना वहां के कहाबा हस्त करके मुक्त कमैया आधारभूत विद्यालय के प्रधानाध्यापक टीकापुर नगरपालिका शिक्षा शाखा के डायरी वितरण करल पाछे मजकाम करल बटुले शिक्षकरण शिक्षण के क्रम में लौव वार्षिकी जैना हो डायरी में टिपोट करती जैना रलक और से शिक्षक हुकरण हाफ छुट्टी के बेला फे योजना निर्माण करती रलक देख के शिक्षक शिक्षा में समेत कुछ परिवर्तन ऐना कर विश्वास लागल बता गिलबा शिक्षक डायरी शिक्षक हुकरण के लग एक सहयोगी बनती गिलबा डायरी से शिक्षण करबेर कठिनाई लव विषय वस्तु में टिपोट करना और ठप योजना सहित के बनैना बानी से शिक्षक हुकरण अभिन फे जागरूक और सक्रिय बनाई रहलबा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछ फेर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एण्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एण्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली।
3: ल यति छिटो आमा बन्न लागेको त
4: थाहा पाउँदैछु यस्तो अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन
3: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
7: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
6: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर। भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई भ्योस हुनु मुटुको धड्कन कम वा ज्यादा भाँडा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
0: विश्राम पछि फेरसे स्वागत बा। कैलाली गाउँपालिका 5 बजैपुरमा निर्माण करगिल 1500 अस्पताल उद्घाटन करगिल बा। बुधबार एक कार्यक्रम के बीचमा कैलाली गाउँपालिका का अध्यक्ष राजसमाज चौधरी से अस्पताल के उद्घाटन करल के हुए। वहां संघीय सरकार के लगानी में निर्माण करगिल अस्पताल में स्थानीय तह के आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार करने उद्देश्य से निर्माण करगिल बताइल बाटे। अस्पताल निर्माण के लाख विक्रम संबत 2079 असार 29 गते निर्माण कंपनी संगे ठेक्का समझौता करगिल। निर्माण कंपनी से टोकल संरचना निर्माण संपन्न करके गैल असार में नई पालिका हस्तांतरण समेत करल रह। अस्पताल निर्माण में कुल 18,52,00,000 रूपया के लागत में निर्माण हुआ। संघीय सरकार के स्थानीय तह में अस्पताल निर्माण करना नीति अनुसार कैलाली में फे 1500 के अस्पताल निर्माण करगिल गांवपालिका के अध्यक्ष चौधरी बटवैले बाटै। अस्पताल संचालन में आयल पाछे कैलाली गांवपालिका के विशेष करके दक्षिण क्षेत्र में नागरिक उकरण के स्वास्थ्य उपचार के लाग दूर जाय पर्ना बाध्यता अन्त्य हुन अपेक्षा करगिल बा। ये आगे गांवपालिका में पर्याप्त स्वास्थ्य उपचार के व्यवस्था नहीं हुई लगे सामान्य स्वास्थ्य समस्या से लेके समेत स्थानीय वार्षिक उपचार के लाग धनगढ़ी पुग्ती रहें। कैयों नागरिक उकरण उपचार के लाग सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र में समेत जाय परल रह। स्थानीय स्तरमें 1500 के अस्पताल संचालन में आयल पाछे सामान्य से लेके आवश्यक स्वास्थ्य उपचार अब गांवी में उपलब्ध हुईना उपचार के लाग धनगढ़ी और भारत जाय पर्न बाध्यता कम हुई अपेक्षा करगिल बा। अस्पताल से कैलाली गांवपालिका के नागरिक उकरण सहज सुलभ पहुंच योग्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराइना महत्वपूर्ण भूमिका खेलना गांवपालिका से जनायल बा। अस्पताल संचालन संघे स्थानीय नागरिक से अपने पालिका में स्वास्थ्य सेवा पाइना रलक ओर से उपचार और समय खर्च समेत बचत होना करल अपेक्षा करगिल बा। साथ ही कैलाली गांवपालिका के स्वास्थ्य उपचार में समेत पहुंच थप प्रभावकारी बनाइना अस्पताल आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति तथा सेवा विस्तार करती रहना अध्यक्ष चौधरी के कहाई बा। कुल 2500 मेगावाट बराबर के बिजुली प्रवाह के लाख बझांग के समेत में बनल पश्चिम सेती प्रसारण लाइन निर्माण हुईना हुईबा। कुल 400 केवी क्षमता के ई आयोजना निर्माण के लाख आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ा गिलबा। कुल 60 किलोमीटर के लंबा प्रसारण लाइन बझांग जिला के जय पृथ्वी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में समेत प्रस्तावित चैनपुर सब स्टेशन से लेके दोटी जिला के शिखर नगर पालिका 10 में समेत प्रस्तावित समेत बनला के पश्चिम सेटी में जोड़ना प्रसारण लाइन निर्माण के लाग राष्ट्रीय प्रसारण ग्रेड कंपनी लिमिटेड से विद्युत विकास के विभाग में आवेदन दे गिलबा। विद्युत एन 2049 के दफा 940 के व्यवस्था अनुसार विवरण खुला के अनुमति लेके आवेदन दे पर्ना व्यवस्था करल बा। हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रलक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा। हाल मनसूनी न्यूनचापी रेखा सरदार स्थान से फिर कुछ उत्तर पंजालंग नेपाल के समेत तराई भूभाग लग रहल बा, जेकर प्रभाव श्याल देशभर साधारणतया मौसम बदलती बा कलसे हाल कोसी बागमती हो गंदकी प्रदेश के कम स्थान में लुम्बिनी कर्णाली और सुरपश्चिम प्रदेश के कुछ स्थान तथा मध्य प्रदेश के कम स्थान में चट्यांग सहित मध्यम सम के वर्षा हुई कहलबा दोपहर के देशभर के साधारणतया मौसम बदलना बाकलसे कोसी बागमती गंडकी प्रदेश के हिमाली भूभाग में ढेरी स्थान तथा लुम्बिनी कर्णाली सुरपश्चिम प्रदेश के कुछ स्थान में मध्यम खाल के पानी पर्न संभावना बा कोसी बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई भूभाग के साथ मध्य प्रदेश के ढेर स्थान में चट्यांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना रहल बा। डल्फिन जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण नेपाल लम्बा समय से डल्फिन संरक्षण और प्रचार प्रसार के काम करते रहलवा बर्खायाम के समय में मोहना पथरयाव काड़ा लडिया में समेत डल्फिन देखती रहलबाट ये क्षेत्र में डल्फिन क्षेत्र के नामकरण करके पर्यटक उकरण अवलोकन करना काम होती रहलवा ई वर्ष असार 16 गते से लेके डल्फिन देखती रहला को अबसम 17 डल्फिन देख पड़ल यहां डल्फिन अवलोकन करना असार से लेके कार्तिक सम विदेशी पर्यटक फे समेत कोई कोई आईटी रलक स्थानीय संरक्षण कर्मी से पहुना हुकरान डल्फिन के बारे में जानकारी देना और घुमाइना काम में सहयोग करते रहल बाटे। खोजखबर में गरी विश्राम विश्राम पाछे फिर से एबी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
8: मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना।
9: टीकापुर नगरपालिकाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 ले तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
8: तपसिल
9: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी
8: बैंकको सक्कल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी
9: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र
8: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति
9: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
8: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
9: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
10: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
11: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका सामान नलका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849-85-18-08।
12: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकलमा जाइस् त
13: मैले जाइ उहाँ आफ्नो अनुहार बिगर्के घर से बाहर नै निकर छु
12: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो यहाँ हेर ई पत्रिकामा लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर

0: कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
1: संपर्क मनीष मेडिकल हॉल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846477417।
0: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। टीकापुर रेड क्रसमा रगत के अभाव होती रहल बा। आजकल रगत के मार समेत ढेर ओ आपूर्ति में कम रलक ओर से कारण से समेत रगत में समेत ऐसे के अपुग होती रलक बटा गिलबा। रगत कम हुईले ओर से समस्या होती रहल बा। आजकल दैनिक 15 पिन से ढेर रगत खपत होती रहलो। परोकेल एक दिन समेत 32 पिन रगत खपत हुई। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी के रक्त संचार फाट के प्राविधिक प्रभुराज ने उपानी जानकारी दिले बाटे रगत के माग ढेर रलक ओर से पुगैना धौ धौ हुईती रलक। रक्तदान करके सहयोग करना समेत रेडक्रस से अपील करल प्राविधिक न्यौपाने बटोले बाटे। समय अनुसार फरक फरक रक्त समूह समेत रगत अभाव हुईती रहल बा। आजकल बी पॉजिटिव रगत अभाव ढेर देख गेलक न्यौपाने बटोती आयल बाटे। ओ इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर से राष्ट्रीय परिचय पत्र दर्ता करना संबंधित सेवा के समय अवधि बढ़ायल बा। कार्यालय के समेत परिचय पत्र दर्ता करना सेवाग्राही उपकरण के साप ढेर रलक ओर से ऊ सेवा बिहान के 9 बजे से सांझ के 6 बजे सम्म प्रदान करती रहल। इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर से जनायल बा। कैलाली में समेत इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर से मंगलवार के एक सूचना जारी करती राष्ट्रीय परिचय पत्र दर्ता करना संबंधित सेवा और सूचना जारी नहीं हुट समकेलक एक घंटा ठप करके प्रदान करना जानकारी करा गिल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जेना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। सेती राजमार्ग के दुर्गौली कंचनपुर सड़क खंड में यात्रु उकरण आवट जावट करना कर्रा। दुर्घटना हुईना के साथ ही बाल बालिका उकरण विद्यालय जाना में समस्या। टीकापुर शिक्षा शाखा कार्यालय से शिक्षक डायरी वितरण करल। 5 विद्यालय के शिक्षक डायरी के उपयोगिता और प्रभावकारिता बढ़ती। डायरी से शिक्षक उकरण विपरीती। स्थानीय संचार कर्मी स्थानीय संरक्षण कर्मी डल्फिन संरक्षण में सक्रिय 17 डल्फिन देख पर्ने भोजराज तुंगाना के कहे। रगत के मांग बढ़ल पास टीकापुर रेडक्रस में रगत के अभाव। लिटा बकलत थारू भाषक खोज खबर अत्रे और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकबी। अब्बे के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई। सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM सुनते विराम राम।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: कार्यक्रम मझेरी
1: मझेरी मझेरी।
2: भैया ना करा रेडू बिगरी
3: नहीं का मम्मी टीकापुर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आईटा वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़े चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम तो
0: कहाँ से लंग वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रट गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: त्यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
1: तपाईँ एक्लो कहाँ छ श्रेया, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थेँ, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
0: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ।
1: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्केँ काम गर्न थालेँ अनि पो कमाइ छ त, यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन। हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
0: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिछस् त यार। अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
2: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
3: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था, तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमहे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: हे रामे दिन रात गरी मरी मरी पैसा कमायो तर के गर्नु यो भर नभएको जिन्दगी कति बेला के आपत आइपर्छ थाहै हुँदैन। सोच्दै नसोचेको घटना हुन्छ कि बिरामी परिन्छ अनि सबै पैसा स्वाहा
2: हो नि बिरे मलाई नि त्यस्तै पर्यो नि हेर्न अस्ति अचानक बुढीलाई एपेन्डिसाइटिस भएर रातारात अस्पताल लगेर इमर्जेन्सीमा उपचार गर्नु पर्यो यसो के इलम गरौंला भनेर राखेको पैसा सबै सकियो नि हेर्न।
3: यो रामे र बिरेको कुरो सुन्दा नि मलाई त अचम्मै लाग्छ क्या यस्तै आपतको समयमा अस्पतालमा इमर्जेन्सी हुने खर्चहरू बिहोरी दिने सन लाइफको सन मेडिकेयर बिमा सुविधा लिएका थिएनौ र तिमीहरूले
2: के गर्छ र सन मेडिकेयरले
3: सन मेडिकेयरले सड़क दुर्घटना एपेन्डिसाइटिस पेन्क्रियाटाइटिस हृदय घात मस्तिष्क घात विद्युतीय वा अन्य जलन डुबान विषक्तता जस्ता 15 दुर्घटना र रोगहरूका लागि आपतकालीन अस्पताल खर्चमा क्षतिपूर्ति दिन्छ त्यो पनि एकदमै थोरै लगानीमा
2: यति गरेपछि धेरै राहत हुने रहेछ त
3: हो कान्छा अपरजट आउने आपतमा राहत भनेकै सन मेडिकेयर कुरा बुझ्यो होइन त तिमीहरूले
2: चिया पनि खाइयो कुरो पनि बुझ्यो है केटा।

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरा
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला जस कटस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: छी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो तो
1: ली डायल करी 97 26 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 26 20 300 ओ 98 656 92 026
2: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
3: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्याक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
2: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
3: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
2: लाला दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
4: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
3: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दन्त रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 रक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35-8 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।
3: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछ छोरी?
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
3: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
4: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
3: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
4: न्यू अछाम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
5: न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर, न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्स मा नया नया डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुमका, छड्के तिलहरी, बाला, चूरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसन का गर गहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदी का सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैन को शाखा टीकापुर को सिद्धार्थ चोक मा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98-688-14-799, 98-24-60-25-32। अछाम मंगलसैन का लागि धूप सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98-24-67-28-25।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाऊं
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: के तपाईलाई थाहा छ,
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
2: आई बुढल्ला, सुन्तो कि नै वानन्दी भोज आगिलि न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने ना पट्टा नि पैना त
3: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दीदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना कान से के कतरा सुगर बना कान लबाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41 208 और 98486 39 261।

0: अली किन रिसाएको हो? नरिसाउ न।
1: म रिसाए नि खुसाए नि तपाईँलाई के भयो?
0: म जनउसकै मायाले लाहोरबाट आइरहेको छु। कस्तो रिसाएर हिँडेको?

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे खोज खबर में अपना कन स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपनौकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से कैलाली के सामुदायिक बनुआ वर्षों से हजार वृक्षारोपण करती तर लगागिलग बिरुवा बचाइना सामुदायिक बनुआ न चुनौती मनसून जन्य विपद पूर्व तैयारी के प्रगति नियमित पेशकरण निर्देशन और 4 प्रादेशिक अस्पताल हा दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के शिक्षण अस्पताल बना जाती है। कैलाली के सामुदायिक बनुआ होकर वर्षौ वृक्षारोपण कर्णाकरल बाट तर लगागिलग बिरुवा बचाइना सामुदायिक बनुआ न धीर चुनौती हुईनाकरल बा बरसात के समय में कैलाली के सामुदायिक बनुआ होकर वर्षनी बनुआ मन वृक्षारोपण कर्णाकरल बाट यह वर्ष फिर यहां के सामुदायिक बनुआ होकर क्यू वृक्षारोपण कर्सेक्ल बाट कलशे कोई वृक्षारोपण करना तैयारी में जुटल बाट जनशक्ति सामुदायिक वन जस्ता खुटेना भुराखानी सामुदायिक वन फिर यह वर्ष ढ्यूर जात के करीब 1000 बिरुवा लगैलवा शीतल सामुदायिक वन फे खयर सिमल अर्जुन अम्बा सीताफल लगायत के 5 जात के 900 बिरुवा लगैलवा सामुदायिक वनमा वर्षेनी हजारौं बिरुवा लगैल से फे हुकन हन जोगैना एकदम चुनौती रहलक बटवागिल बा कौनो बिरुवा सुकन जैत कलसे कौनो जंगली जनावरो छाड़ा चौपाया पशु चौपाया हुकर खाद्य ठट कौनो घास कटुया हुकर काट्य ना करलक सामुदायिक वन के न्यून बनुआ मन न्यून मात्रा मन लगागिलग बिरुवा फे बचैना सफल हुईल बाट सत्ती कर्णाले सामुदायिक वन समूह फे अब वृक्षारोपण के तैयारी करती रहल बा सामुदायिक बनुआ बिरुवा लगाइक लाग खोल्टी खन्नाकरण जारी धरल बा बिरुवा लगैल से फे बचैना समस्या हुईना कलक ओ डांचे कलहक बिरुवा बसना करलक सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष चित्राम चौधरी बटुलबाट टीकापुर वन संरक्षण समिति फे वनोमन वृक्षारोपण करना तैयारी करती रहलबा अब बरसात धुईटी रहलक उसे जमीन में पानी जमलक कारण बिरुवा लगाई निषेगिलक पानी कम होना लगत वृक्षारोपण करना तैयारी हुईटी रहलक टीकापुर वन संरक्षण समिति के अध्यक्ष नयन सिंह ठकुला बटुलबाट सामुदायिक वनुआ वर्षेनी हजारों बिरुवा लगैल से फे हुकन बचैना मुख्य चुनौती देख गिलक कारण सामुदायिक बनो मन बिरुवा लगैना कल नाही हुकन बचैना हो फे ध्यान जाइपना देख गिलबा टीकापुर रेड क्रस में रगत के अभाव हुई लागल बा आजकल रगत के मांग बढ़ी व आपूर्ति कम हुई कारण रगत पुगई समस्या हुई रहल बा आजकल दैनिक 15 पेंट सेफे बढ़ी रगत खपत हुई रहल को परौ कलहक 32 पेंट सम्म रगत खपत हुईलक नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त संचार फाट के प्राविधिक प्रभुराज नेउपा ने जानकारी करैला बाट रगत के माग बहती रहल कुंवरसे पुगाई ढौढौ हुईटी रहल कुंवरसे रक्तदान करकस सहयोग कर समेत रेड क्रस अपील करती रहल प्राविधिक नेउपा ने बटुलबाट समय अनुसार फरक फरक रगत समूह के रगत अभाव हुईना कलक आजकल बी पोजिटिव रगत के अभाव बढ़ी देख गिलक फे नेउपा ने बटुलबाट राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद ढकाल मनसून जन्य विपद व्यवस्थापन में सरकार के पूर्व तैयारी प्रभावकारी बनाई निर्देशन देलबाट सांसद होकर विपद व्यवस्थापन में सरकार के तैयारी कमजोर रहलक बटोटी आवश्यक तैयारी और अनुगमन में जोर देलबाट विपद न्यूनीकरण के लाग अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास सीख और समुदाय स्तरसम शिक्षा विस्तार करपना सुझाव देगिलवा राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद ढकाल मनसून जन्य विपद व्यवस्थापन में सरकार के पूर्व तैयारी प्रभावकारी बनाई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उल्लेखित विषय हन प्राथमिकता के संग कार्यान्वयन कर सरकार निर्देशन देलाबाट वहाँ हरेक आर्थिक वर्ष के पुष मशांत ओ असार मशांत भीतर कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन राष्ट्रीय सभा में पेश कर ओ कार्यान्वयन के अनुगमन कर संबंधित विषयगत समिति निर्देशन देला। राष्ट्रीय सभा के सांसद हुक्र मनसून जन्य विपद व्यवस्थापन में सरकार के पूर्व तैयारी प्रभावकारी हुई निशेकलक बटुटी विपद से हुईना मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण के आवश्यक तैयारी में जुट सरकार के ध्यान आकर्षण करैल रहल। मनसून जन्य विपद व्यवस्थापन में सरकार के पूर्व तैयारी संबंध में गृहमंत्री के ध्यान आकर्षण करैना प्रस्ताव ऊपर छलफल मन सहभागी सांसद हुक्र सरकार के ध्यान आकर्षण करैल फुट। खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछा एनएनईबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि।
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाइफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली।
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
5: दाजु हेर्नुहोस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु
6: के गरौ त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
5: दाई बरु एकपटक टीकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
6: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक
7: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू ओपिडी सेवा भिडियो एक्सरे सेवा ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा इसिजी सेवा मेडिकल सेवा इएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। डाक्टर हेमन्त स्वार, टिकापुर ब्लक नम्बर 7, गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 0915600095, मोबाइल नम्बर 98484273।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ 32 विश्व आदिवासी दिवसके तयारी पूरा हुइलक जानकारी देलबा। महासंघ बिहिबार काठमाण्डुमा पत्रकार सम्मेलनके आयोजना कर्क तयारी पूरा हुइलक जानकारी देलक हो। संयुक्त राष्ट्रसंघके घोषणा बमोजिम प्रत्येक वर्ष अगस्त 9 तारीकमा विश्वभर आदिवासी दिवस मनाइनाकै जैत महासंघ यही वर्षके आदिवासी दिवस प्राप्त अधिकार रक्षा आजके आवश्यकता पहिचान सहितके समावेशी व न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण हमार साझा प्रतिबद्धता कना मूल नारा के संग देशभर विभिन्न कार्यक्रम कैका मनाई लगलक महासंघ के महासचिव विमल सारू मगर जानकारी देलबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सहित दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय केलाक प्रदेश के 4 प्रादेशिक अस्पताल शिक्षण अस्पताल के रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृत देलबा। बिहिबार बैठक प्रदेश मन्त्री परिषद बैठक से धनगढ़ी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल, लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर प्रादेशिक अस्पताल व महेन्द्रनगर स्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पताल विश्व विद्यालय के शिक्षण अस्पताल के रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृत देना निर्णय गर्लक हो। मन्त्री परिषद सम्बन्धित निकाय से आवश्यक सम्झौता गर्ना ओ कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रिया आग बढ़ैना निर्णय समेत गर्लबा। प्रदेश सरकार के निर्णय के संग विश्वविद्यालय के शैक्षिक संरचना विस्तार गर्ना प्रक्रिया आग बढ़ना हुइलबा। चार्थो अस्पताल शिक्षण अस्पताल के रूपमा उपयोग गर्ना व्यवस्था हुइलबा छ। सुदूरपश्चिममा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन शुरू गर्ना आधार तयार हुइना हुइलबा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय 3 वर्षीय बीए के परीक्षा फारम 2082 भदौ कार्तिक मन भरैलरह भदौमा जेएनजी आन्दोलन के कारण फारम भर विद्यार्थी छुटलक कारण कार्तिकमा दोस्रो पटक फारम भराइल तर फारम हली भरलसे फे परीक्षा ढिला हुइबेर थप अध्ययनमा असर पर्लक गुनासो विद्यार्थी उग्र कलबाट। 2083 वैशाख 3 गते परीक्षा तालिका सार्वजनिक हुइल ओ जेठ 18-27 परीक्षा सञ्चालन हुइल। ढिलाकै परीक्षा हुइल थप अध्ययन कर ढिला हुइल कोर्से हली नतिजा सार्वजनिक कर माक कर्ती महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस के विद्यार्थी योगराज ढकालकल आंशिको मौका देलक विद्यार्थी के परीक्षा एकचो कैगिल रह आंशिको मौका परीक्षामा 2430 विद्यार्थी के नतिजा आह्वान नियाइल हो। उच्च शिक्षा अध्ययन रोजगार प्रवेश परीक्षा दिएसे वञ्चित हुइलबाटी उहाँ गुनासो कर्ल हाम्रा आंशिक उहरके विद्यार्थी हुइती नतिजा सार्वजनिक निहिबेर एलएलबी अध्ययनके प्रवेश परीक्षा दिह निपाइल हुइती कोविड काल ठेसे परीक्षा ढिला हुइल कारण आंशिक उहरके विद्यार्थी थप मारमा परलबाट। कैलारी गाउँपालिका 5 बैसपुरमा निर्माण करगिलक 1500 के अस्पताल उद्घाटन हुइलबा। एक कार्यक्रम के बीच कैलारी गाउँपालिका के अध्यक्ष राम समज चौधरी अस्पताल के राज समज चौधरी अस्पताल के उद्घाटन करलक हुइट। संघीय सरकार के लगानीमा निर्माण करगिलक ऊ अस्पताल स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न उद्देश्य लिएर निर्माण करगिलक हो। अस्पताल निर्माण के लाग विक्रम सम्वत 2079 साल असार 29 गते निर्माण कम्पनी से ठेक्का सम्झौता हुइल रह। निर्माण कम्पनी तोगिलक संरचना निर्माण सम्पन्न कैक गैलक असार मन गाउँपालिका अस्पताल हस्तान्तरण गर्ल रह। खोज खबरमा फेरफेर विश्राम विश्राम पाछ एनएनी बाटी सुन्ती रहे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
8: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जार सेक्ल।
9: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो नी करत का कहना हो का
8: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
10: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
9: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्म टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
12: टिचिङ हस्पिटलबाट एमबी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ
11: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
12: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
11: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
12: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
11: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
12: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
11: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
12: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
11: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
12: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
11: सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772
13: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्मा टेरसलाई सम्झिनुहोस्
14: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बञ्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदन राज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588080
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा हाल देशभर मनसुनी वायुके प्रभाव हिटिरलक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनैलबा हाल मनसुनके न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थान छेफे कुश उत्तर उहर गैलक तराई भूभाग लक्क रहलबा ज्याकर प्रभाव से हाल देशभर साधारणतया बद्री लागलबा हाल कोशी बागमती ओ गण्डकी प्रदेश के ढिउर ठाउँमन लुम्बिनी कर्णाली ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश के कुश ठाउँमन ओ मध्य प्रदेश के कुश ठाउँमन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा हुइटी रहलबा कोशी बागमती गण्डकी ओ लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी ओ तराई भूभाग के संग मध्य प्रदेश के ढिउर ठाउँमा चट्याङ सहित मध्यम वर्षा के सम्भावना बा कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग ओ सुदूरपश्चिम के पहाड़ी ओ तराई भूभाग के कुश ठाउँमा चट्याङ सहित मध्यम वर्षा के सम्भावना रहलबा डल्फिन जलचर तथा जैविक संरक्षण नेपाल लम्मा समय थिसेर डल्फिन संरक्षण ओ प्रचार प्रसार के काम करती रहलबा बर्खाके समय मन मोहना पथरैया काँडा ओ कन्द्राला देमन डल्फिन देखजिना करजिठ उह क्षेत्र न डल्फिन क्षेत्र नामकरण कैक पर्यटन हुकन अवलोकन करैना काम हुइटी रहलबा ये समाचार के संग 5 बजे खोज खबर हो रहा है जेती जेती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से कैलाली के सामुदायिक वनवाहों के वर्षे में हजारों वृक्षारोपण करती तर लगागिलक बिरुवा बचाइना सामुदायिक वन चुनौती मनसुन गर्ने विपद पूर्व तयारी के प्रगति नियमित पेश कर निर्देशन ओ प्रादेशिक 4 प्रादेशिक अस्पताल हा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के शिक्षण अस्पताल बना जैना लिटा अब खोज खबर श्रीमय गीता चौधरी विदाई हो और समाचार 6 बजे खोज खबर सुन सेक्बी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल
1: अरे का करू री बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहो रहा घूम जाए तो था पाए
2: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भर्न से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई में फोन करी अब्बा का सरसफाई कई दी है।
0: फोन नंबर कटरा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300।
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई हो? महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा।
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझे। संचालक शेरबहादुर थारू। संपर्क नंबर 97 26 20 300।

0: सुन्ने हो 98 6 56 92 0 26।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड़ खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800046747417
4: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय में कृषि स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना खुलेको सूचना
1: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत स्कूल अफ एग्रीकल्चरमा स्नातक तह बीएससी एजीमा नियमित तर्फ 6 जना र सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी 10 जनाका लागि भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ
4: स्कूल अफ एग्रीकल्चरमा बीएससी किन पढ्ने
1: सुविधा सम्पन्न भवनमा आधुनिक प्रयोगशालामा अभ्यास गराइने
4: आफ्नै फार्म हाउसमा अभ्यास गराइने
1: सुदूरपश्चिमका 9 वटै जिल्लाबाट 1-1 जना र प्रवेश परीक्षाको सूचीमा उत्कृष्ट विद्यार्थी सहित नियमित तर्फ 25% आरक्षित छात्रवृत्ति कोटा रहेको
4: अन्य विश्वविद्यालयको तुलनामा सबैभन्दा कम शुल्कमा पढाइ हुने
1: स्नातक उत्तीर्ण सबै विद्यार्थी स्वदेश र विदेशमा गई अध्ययन रोजगारी र उद्यममा संलग्न भइसकेको
4: अनलाइन र अफलाइनबाट समेत फारम भर्न सक्नुहुनेछ
1: आवेदन फारम भर्ने मिति 2083 साउन 25 गतेसम्म रहेको छ
4: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन 2083 साउन 30 गते बिहान 11 बजे प्रवेश परीक्षा केन्द्रहरू स्कूल अफ एग्रिकल्चर टीकापुर काठमाडौँको लागि पछि निर्धारण गरिनेछ विस्तृत जानकारीको लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय स्कूल अफ एग्रिकल्चर टीकापुर www.agriculture.fwu.edu.np मा लगन गर्न सकिनेछ
1: सम्पर्कका लागि 091560265 98491047 984680306 र 98462878174 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ
5: दाजु हेर्नुहोस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु
6: के गरौँ त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
5: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
6: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक
7: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू ओपिडी सेवा भिडियो एक्सरे सेवा एक्सरे सेवा ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा इसिजी सेवा मेडिकल सेवा ईएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म डाक्टर हेमन्त स्वार टीकापुर ब्लक नम्बर 7 गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टीकापुर फोन नम्बर 091560095 मोबाइल नम्बर 98484273059

0: बुका पी रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, एक आनल झोला जस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू, रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: सूचना सूचना सूचना
4: कंसल्टेंट इंडोक्राइनोलॉजिस्ट MBBS MD इंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म डॉक्टर कृष्ण ऐरी ईशान मेडिकल हल टीकापुर में यही साउंड 23 गते 4 शनिवार का दिन बिरामी चेक जांच करना आउँदै हुनुहुन्छ।
3: निम्न समस्याहरू:
4: सुगर रोग,
3: गर्भकालीन मधुमेह,
4: महिला को शरीर में अनावश्यक रौं बढ़ने,
3: सुगर रोग का कारण होने समस्या जस्तै खुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, दिन तथा रात में पटक पटक पिसाब लाग्ने, मुख सुक्ने, तिर्खा लाग्ने,
4: थायराइड कम जस्तै थकान लाग्ने, तौल बढ़ने, छाला सुक्खा हुने, कपाल झर्ने, अनुहार फुल्ने, चिसो बढी लाग्ने,
3: थायराइड बढी जस्तै तौल घट्ने, धड़कन बढ्ने, पसिना धेरै आउने, निन्द्रा नलाग्ने, हात कामने, चिचिडापन, आँखा फुलेर बाहिर आउने,
4: कम उमेरमा पनि प्रेसर, मोटोपन, कोलेस्ट्रोल बढ्ने,
3: उमेर अनुसार शरीरको उचाइ नबढ्ने वा धेरै अग्लो हुने, महिनावारीमा गडबडी र यौन इच्छामा कमी हुने। के तपाईँले निम्न मध्येका कुनै समस्या त छैन? छ भने ईशान मेडिकल हलमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98 58 41 31 31 र 98 60 11 14 00। डाक्टर आउने समय प्रत्येक महिनाको चौथो शनिवार बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। सम्पर्क स्थान ईशान मेडिकल हल, टिकापुर 1, कैलाली। याद गर्नुहोस्, जाँच गर्नुपर्ने बिरामी खाली पेटमा आउनुपर्ने छ।

महाराज परीक्षित श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भंडित चारोटा कुमाराज भगवान नारायण वासुदेव प्रभु को दर्शन भेट करना का लगी बड़ो गंभीर प्रेम का साथ में जा रहे वैकुंठ धाम भन्ने समन को कथा है सद्यवट जय बोलो श्री मुरा।